हे आ प्रणवत नानक तन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। अस महला पंजवा पही प्राप्त मानुख दे होरिया। गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंग जाम लाग भव जल तरन कै।

शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक कम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कबो वाच बेनती चौपाई पातशाही दसवीं। हमरी करो हद रक्षा, पूर्ण होहे चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कहावो, आप हाथ दै मुहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज कर दै करै, सबैरन को आसंघरै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अबरना त्याऊं, जो बर चहूं स तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ है मुझे उबरे है, मरण कार का त्रास निवरे है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो करे हो रच्छा। राख ले हो मोराखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बा दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर धसकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमसा। जवन काल जोगी शिव की हो, वेदराज ब्रह्मा ज्योति हो। जवन का सब लोक सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जचनो पजायो। आदि अंते कैवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सगल प्रजाओ जने आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असूला, सपर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जाबोध करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दही अपारा। जब कर कर तुह कब हूं, तो मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन सृट सब तहारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेदर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ। ता का मूल उचारत भेदा, जा को भेब न पावत भेदा। ता को कर पाहन अनमानत, महा मूड कज भेद न जानत। महा देव को कह सदा, शिव निरंकार का चिंतन भेब। आप अपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो हे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, के विसजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। अंड जिर से तजकीनी, उत्पुज खान बहो रचदीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमड भयो शंकर कैठा। सगरी सिरड दिखाई चंपवा, जुगा सरू स्वयंभव। अवर अच्छा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठो दुपाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुड़ दुगत हवै मरे। पुरख जन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याहे है, ताके काल निकट न आए है। रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृढ़ तन जाए निहर हूं, ता के ताप तन कमो हर हूं। रिसिद कर्मों सब होई, दुट चा चवै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहां दार, दुष्ट दोख ते रहम। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई,

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन भजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घरता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिरत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दिया एह वड्याइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द जित घर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत उद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया भर पूरे बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगु रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार जे को खावै जे को पुंचै दिसका होए उधारू एहि वस्त तजी रह जाई नित नित राखु रतारु तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारू श्लोक

बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लीन तिहाई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावै तहाए। सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। सब थाई हुई सहाय दसों पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौं साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरना चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसा ना निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियाज देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साही दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तां न्योटियां दी ओट धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी दी अपार बख्शे कृपा दयालता सदका संध्या समय दे रात्रि दे दीवान गदरी बाबिआं दे इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे सजाए गए सजे दीवाना वि सोदर रह रास की पावन बाणी के नितनेम आरती शब्द कीर्तन गुर शब्द कथा विचार शेपुड़ी आनंद साहब जी के पाठ पावन बाणी का पाठ कथा कीर्तन करद बेअंत पुलागों वास्ते सुमत प्रदान करनी दाराइया संगतां दीआं सेवावां भेटावां हाजरियां प्रवान करनियां गुरमत अनुसार संगतां दे कारज रास करने समूह संगतां वल्लों पावन दरबार विच तिहावल कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे प्रवान प्रसाद संगत विच वरते जो शके आप जी दा नाम जपे कृपा करो दाराई संगत नूं इलाही श्री मुख वाक बख्श के सुना के निहाल निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पही अकाल की सब सिखन को हुक्म है।

0: आया बसंत बहार दा दिन
1: सतगुरु दे पवित्र चरणों में जुड़ बैठी साध संगत जीओ आओ बहुत तोड़ भागे हाँ सतगुरु जी ने महान कृपा की। सतगुरु जी कहिंदे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दे महावक अनुसार सरदार साहब सरदार रविंदर सिंह जी ते सरदार गुरचेतन सिंह जी इन्हां दे सच्चे पातशाह ने महान कृपा की है। सो जो कि सतगुरां दे पवित्र चरणां विच आनंद कारज दी रस्म जिहड़ी है वह पूरी हुई है। आनंद कारज वैसे मैं साल डेढ़ कु साल होया अमेरिका दे विच आया नूं अज पहले दिन जिहड़ियां रौनकां आनंद कारज क्या किहनूं जांदा अज पहले दिन और मैं रौनकां वेखियां नहीं ते पंजाब दे विच ते वैसे पंज सत जणे जा के आनंद कारज हुंदा है वह ना जरूर हुंदा आनंद कारज पर कार्ज कला कार्ज ही हुंदा ते आनंद है आ। सो बहुता समा नहीं मैं आप दे चरणा विच ज्यादा समा ला के कुछ कह सकां। इको ही कविता आप जी दे चरणा दे विच मेरे वीर कमलजीत सिंह जी आप नूं सुना के निहाल करेगा। इस आओ सब तो पहला फतेह बुलाइए गज के कहिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सियाणा ने हर एक इंसान के उत्ते दो बार खुशियां लिखिया। एक जदों किसी का आनंद कारज तो बाद मन दे विच वधेरे खुशी हुंदी है हर एक दे भावें कोई राजा होवे भावें कोई वजीर होवे भावें कोई अमीर होवे भावें कोई गरीब होवे हर एक दे मन दे विच चाहना हुंदी है कि मेरे ब्याह तो बाद मेरे घर पुत्र पैदा होवे धीआं पैदा होण। एक खुशी वह हुंदी है एक खुशी हर एक जोड़े दे मन विच ए हुंदी है कि साडा हुण बच्चा जवान होवे धी जवान होवे उहदा आनंद कारज करां। यह खुशी जिहड़ी आ हर एक जोड़े दे उत्ते दो वार विद्वानां ने लिखिया भी महान खुशियां आउंदियां। सो इन्हां दोनों पुराणां ते सच्चे पातशाह ने कृपा की है। शहर ने दो कलेना लिखिया कहिंदा कि दिल विच मापिआं दे बड़ी खुशी हुंदी भी जदों दिन सुभाग दे आउंदे ने धियां पुत्तां दे जदों विआह हुंदे साख संबंधियां नूं सद बुलाउंदे ने गृहस्त बाग दी खिड़ी गुलजारे अंदर सारे प्यार दे फुल वरसाउंदे ने गड्डी गृहस्थी नूं ला के दो पहिए इहनूं तोरना गल सलाह दीए। वैसे च जिंद च के हुंदियां बहुत खुशियां पर सब तो वड्डी खुशी विआह दी है। अज सच्चे पातशाह ने कृपा की है। शहर ने लिखिया कहिंदा अज आया वह दिन सुभाग वाला दोहां धिरां दे होए परिवार सांझे दोहां पासिआं तो इत पत सांझी सांझी जिंदगी होए विहार सांझे कलियां सांझियां वाशना होई सांझी सांझे गुलते होए गुलजार सांझे सीता राम वांगू राधा श्याम वांगू होए दिल और दिलां दे प्यार सांझे वधो फुल्लो जवानियां माणदे रहो तुहाडे प्यार दी शान सवाई होवे। इस समय घड़ी सलखणी दे भजन सिंह वल्लों लख लख ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੈਂਜ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ

0: tempranitos. Porque yo te digo, cuando está todo el mundo,
1: कोई नहीं, ठीक है, ठीक।
2: नहीं, मैं 10 मिनट होती
0: नहीं, मैं
2: ठीक नहीं।

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह
Guru Va